Tūrā sētā dhīgāṁ thāni kīlāṁ tē, dhīgāṁ tē kūtā hūrī lē tē tāgū dhīgāṁ kūnī lāṁ tē. Tī gāṁ tē sētā tā chō rīgāṁ jēlāi jī, highway 7 kēlāi jī, check point kāsā nā, ar chū tēn kīyāṁ sā, kīlā tē ākā thāni lā sāntī kā tī nā, tī wā tē tē āi jī, āsā lēmbrās lēngāṁ tē. Jī tēnā mē jī āgī tēnā kāshīn tī wā kī khēn tē, wā ऐसे कुछ नहीं है उस लाइन में तो ऐसे कुछ नहीं कुछ है खाली ऐसे क्यों क्यों कौन देखो तो यहाँ देख चले कौन देखो कौन देखो तो ऐसे कुछ नहीं कोई खाई क्यों नहीं आ कुछ ऐसे कुछ नहीं लोट लोट हो गए कुछ ऐसे तो इतने तो लड़ने लगे चल रहे तो ऐसे कुछ ऐसे कौन देखो ये कौन ये जो निशान देखो तो आज हम की है तो सुनो कुछ ऐसे तेरे में ऐसे ऐसे तीन कुछ ऐसे टेंशन लूस Mere tiñe ko tiñe ji te la tuye tonsai chiu zhaa si kanji ikeru te tsante de ae ji ku chanla ji ta si kanji blockade kundi nye chiu kundi ae ji ae ji di so tan dera mi sen zhaa ti kundi ta ae ji te chi ji chiu ae kundi ke ti kundi kundi ke ti kundi ke ku sen zhaa ti nde de kundi Supreme Court Judge ke on te ae kundi ba sa ji Take another idea, go and find another idea, go and get a zero kill the mill. And once I see like the one of $2,500, that's another idea. Go away, they think that the agent on the other case is blockaded your chivity. They think in luck on the other, they think that the sea. So, some of the trouble is not only the country, the sea can even sell in the country, the country, the land, the country, the side is fine. Quand le 5 qui était quand j'ai agi quand j'ai tenu j'ai l'indice de 5 d'accord je suis j'ai quand j'ai reasonable steps qui dit quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai